0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 DS FM पे।

दोस्तों फिलहाल आप ढूंढ कर रहे 89.6 रेडियो ओडियस गंगा फोर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों आप हमें कॉल करके आपकी फरमाइशों को दर्ज करा सकते हैं।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: गंगापुर सिटी की धरती।

शब्दों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए, कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना, दोस्तों आज सुबह की सुहानी वेला में आपका मन पसंद और फेवरेट कार्यक्रम लेकर हाजिर रहेंगे। हेलो फरमाइश, दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं। फिलहाल गंगापुर सिटी का वर्तमान तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे हेलो फरमाइश का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी द्वारा। तो करते हैं कार्यक्रम का आरंभ और करते हैं आनंद, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: जोड़ती हूँ। हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ती हूँ।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो जी, नाम बताएं।
1: आरबी गुजर।
0: आरबी गुजर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मोतीपुरा।
0: मोतीपुरा गांव से बताएं आरबी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आरती जी आपको, आपकी फरमाइश के बेहतरीन सा गाना रेडी दिए इसमें कुल किया, धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
5: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
6: हेलो,
7: नमस्ते सर।
6: जी नमस्ते, नाम बताएं।
7: पलक।
6: हाँ जी,
7: पलक।
6: पलक कहाँ से बात कर रहे हैं?
7: गंगापुर सिटी।
6: बताएं पलक जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? थोड़ी सी आवाज क्रैक होके आ रही है आपकी, साफ बताएं।
7: किताब लिखूंगा।
6: किताब लिखूंगा, बिल्कुल सुना रहे हैं पलक जी आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
2: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
3: किताब लिखूंगा।
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: सवाई माधोपुर से बोल रहे सर। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
4: मोनिका बोल रहे हैं सर।
3: मोनिका जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: सर, साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।

तुम मेरी स्वीटी हो जिसे सैलाब ने मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसी सैलाब ने राजू को भी तुमसे छीन लिया। वो राजू जिसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। स्वीटी, तेरा प्यार हासिल करने के लिए अब एक ही रास्ता है मेरे सामने कि मैं राजू बनकर तेरी जिंदगी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
3: हेलो हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर आपका।
4: शुभम।
3: शुभम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी है।
3: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: सैनी जी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आप बात की करवाई।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
0: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: तो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आशीष मीना।
0: आशीष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप? हॉस्टल।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आशीष मीना का गाना सुनना चाहता
0: हूँ। आशीष मीना का कौन सा गाना है सर?
1: कौन सा चला दो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: Just a second, stop. Good news for DSN Academy and Gangapur.

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो सर
2: जी, नाम बताएं।
3: गौरव सैनी।
2: गौरव जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: रेको एरिया।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: मर्द।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये मर्द सॉन्ग।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, नाम बताएं सर आपका। ब्रजमोहन जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
6: जी आप सुना दो, तेरी यादों की चादर ओढ़े।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस पे। क्या बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
0: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: साथ है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं आपका। सनाज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
2: बताएं सनाज जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
3: मुझे तुमसे मोहब्बत है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सनाज जी आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: हम जी सर, हम राधिका जी बोल रहे हैं उदयपुर से।
1: जी, गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: हम

वक्त हो चुका है 11:15 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजी फलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए सुमन शर्मा जी की। सुमन शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो

0: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
1: राजू लवानिया जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फिल्म का नाम है रुदारी
1: जी।
0: दिल हूँ हूँ करे लता जी की आवाज।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी कृपा, इसके लिए बैठते हैं।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीच में है शहर का कमाल। DS 89.6

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन

0: हेलो, गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं आपका।
1: निशा शर्मा, हम आपको सुनते
0: हैं। निशा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बेकमलिया।
0: बिल्कुल सुना रहे मैम आपकी फरमाइश से, बेहतरीन सा गाना है। धन्यवाद। हाँ जी
1: सर, लेट चलाइएगा, अभी मंदिर अंदर जा रहे हैं तो लेट चलाइए।
2: सारे लोग करती है ना मेरे से, बस लंबे तो सब है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: अंकित मीना।
0: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ओवर यू।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश सही।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार जी
0: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम बिलखेड़ा, सवाई माधोपुर।
0: तुलसीराम जी बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप आज?
1: फिल्म का नाम है जीवन पुकार और गाने की बोल है इस वक्त की है जी।
0: सर गाना तो मैंने बताया।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम बताएं आपको।
0: सर मेरा नाम है अय्यूब सलमानी।
1: सलमानी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं सर, सिकंदर मूवी का गाना है, हर चीज तुम्हारी हर एक निशानी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं, फिर आप फरमाइश करिएगा। हेलो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS। 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: लंबा तो सब है।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका।
0: जी मेरा नाम सोहेल सैफी है।
1: सोहेल सैफी जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं सुनना चाहता हूँ हसीना मान जाएगी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन।

0: हाँ जी, योगेश जैंगरे पे मैं तरह यूज करता हूँ।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कभी खुशी कभी गम से सुना देंगे सूरज हुआ मध्यम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता जब तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सरहद नहीं होती जब तो नहीं रहा। ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते, प्यार के रिश्ते होते, मोहब्बत के रिश्ते होते। और एक बात और बता दूं, आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा।

0: नमस्कार मैडम।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: रतन लाल बोल रहा हूँ, पुलिस चौकी के पास से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: जरा सामने तो आओ, चलिए चुप चुप चलने में क्या राज है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: रेडियो डीएस वंदना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: तो जैसे नहीं चीली चीली आ

12:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.9।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम।
1: जी नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी सुना, पिक्चर का नाम है पद्मावत, गीत है घूमर घूमर घूमर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: थैंक यू,
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: जिला बाड़ में राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम।
1: जी नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गीत सुना, पिक्चर का नाम है पद्मावत, गीत है घूमर घूमर घूमर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
2: आपका
3: बढ़िया गाना लगा दो मेरा।
2: सर नाम क्या है आपका?
3: मेरा अब्दुल वाहिद नाम है।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: मैं मोगला गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: गाना लगाओ, अखियों से गोली मारे।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कोमल जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सब कुछ भुला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया।
1: ओके मैम, सुना रहे आपकी।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है सर आपका?
0: नीरज योगी।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: नैना के तीर।
1: ओके, से सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।
2: लाल शरारा। क्या हुआ
3: यार? प्लीज मना लो ना,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS साइंस Academy, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी. संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111.
1: हेलो.
2: हेलो, नमस्कार
1: सर. नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: शाबिर बोल रहा हूँ.
1: जी, कहाँ से बात कर रहे सर?
2: दशहरा मैदान से बोल रहा हूँ.
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने.
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस।
3: हेलो,
4: हाँ जी,
3: हेलो,
4: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
5: मेरा नाम नंदनी सिंह।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
5: लखीमपुरा।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: वो जो कहते थे विचरेंगे।
4: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
2: हेलो,
3: हेलो,
2: कहाँ से बात कर रहे हो? नाम क्या है आपका?
3: हम डीएस स्कूल से।
2: नाम क्या है?
3: कुलदीप मीना।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: गंगाजल।
2: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: तन्नू राजपूत।
1: कहाँ से बात कर रहे हो तन्नू जी?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: Just a second, stop. Good news for DS Science Academy and Gangapur.

गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का थड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और अभी आपने सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे नए तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: पूर्व वक्त हो चुका है 1:29 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं गर्मियों के मौसम में पुदीना का

पुदीना शरीर को ठंडक देने के साथ साथ यह कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। पुदीना खाने के फायदे, शरीर को ठंडक देता है। गर्मी और लू के मौसम में पुदीना शरीर को ताजगी और ठंडक देता है। पाचन बेहतर करता है। गैस, अपच, पेट दर्द और भारीपन में पुदीना काफी आराम देता है। मुंह की बदबू दूर करता है। इसकी खुशबू सांस को ताजा बनाती है। लू से बचाने में मदद, पुदीना, नींबू और काला नमक का शरबत गर्मियों बहुत लाभकारी माना जाता है। सिरदर्द और थकान में राहत, पुदीने की खुशबू और ठंड का तनाव व सिरदर्द कम करने में मदद कर सकती है। त्वचा के लिए ये फायदेमंद पुदीना त्वचा को ठंडक देता है और गर्मियों में होने वाली जलन और खुजली में आराम दे सकता है। इम्यूनिटी को सभी ऑक्सीडेंट और पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। गर्मियों में पुदीना कैसे इस्तेमाल करें? पुदीना शरबत, पुदीना चटनी, नींबू पानी में पुदीना छाछने, पुदीना सलाद में पुदीना पत्ती। FM रेडियो के लिए छोटी लाइन, गर्मी मौसम में पुदीना अपनाएं, शरीर को ठंड और ताजगी दे लें। गर्मियों के मौसम में पुदीना

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है, 2 बज चुके इस वक्त, आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी देर में आप सुनोगे बुली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13111.
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी.
2: ये DS Science Academy के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है. मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस. ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है. वर्तमान में एडमिशन ओपन है. स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान. ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है.
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी.
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके.
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियाँ जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान.
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल.
6: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम.
7: DS साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस. DS साइंस एकेडमी, पेरेंट्स ट्रस्ट.

फिलहाल आप लोगों का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों दोपहर के 3 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम बैक टू बैक गानों का। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ पापा के बर्थडे के लिए परफेक्ट।
2: वो नहीं आने वाली, वो भी वो भार निशलावाद की।

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, हर बीट में।

0: बड़ी बोरिंग पार्टी है।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: ओनली वन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: जस्ट ए सेकंड स्टॉप। गुड न्यूज फॉर डीएसएन एकेडमी एंड गंगापुर सिटी एंड

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: Just a second, stop. Good news for DS Science Academy and Gangapur.

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का धड़का में आपके रेडियो दोस्त आरजे बलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाओ 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गुड आफ्टरनून, मैम निशा शर्मा गंगापुर सिटी से।
2: निशा जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: हरियाणवी सॉन्ग है, सरा ररा घूम मेरी मेरे सरा जागर।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
1: थैंक यू मैम।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
2: हेलो
3: नमस्ते
2: जी नमस्ते मैम
3: नमस्ते सर
2: मैं शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ
3: जी सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे
2: आज माधुरी दीक्षित जी का 15 मई को जन्मदिन है मैं उनके जन्मदिन पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ फिल्म का नाम है दिल जले
3: और गाने के बोल
2: जिनके आने से रंग में डूब गई शाम
3: ओके सर सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: थैंक यू गुड इवनिंग
3: यू वेलकम

0: नमस्ते, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाना है मेरी जहाँ प्यार करो।
1: कौन सा सर?
0: मेरी जहाँ प्यार करो।
1: मेरी जहाँ प्यार करो।
0: जी
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6।
3: हेलो
4: हेलो, नमस्कार बहन जी।
3: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
4: नाम तुलसी राम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा और जिला सवाई माधोपुर।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: याद रहेगा प्यार का ये रंगीन जमाना, याद रहेगा। फिल्म का नाम है उमर कैद।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरा रूह सुना मनाना।
0: ओके मैम, सुना

0: हेलो
1: नमस्ते
0: जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम बाबू खान है
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से जी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पर गौरा डोले।
1: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, क्या है?
1: आरबी भुजिया।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: दिमापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: यारा सॉन्ग।
0: कौन सा?
1: यारा सॉन्ग।

0: कैसा है फ्रेंडशिप बैंड्स?
1: एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था, तो मैं हर कलर का एक फ्रेंडशिप बैंड ले आया।
0: लाओ दो, ये लो।
2: मैं

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सॉरी
0: ओके मैम, सुना फरमाइश करिए गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: आर्यन वीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: लोपर से हरियाणा के।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: गुड इवनिंग मैम.
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है सलमानी मैम.
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सुलेखा गंगापुर सिटी से.
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं तू जो एहसास के सनम मुझसे बात करती है.
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश. पर

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: हेलो।
4: हाँ मैम।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: एमन सिमीना।
3: कहाँ से बात कर रहे
4: हो? गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: जाए सजना।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शेर सिंह गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जय माधोपुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बेरी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो मैम,
1: नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद अकरम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सैयारा फिल्म का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना लुट पुटे गया फ्रॉम द फिल्म डंकी। और एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि चांद आपने देखा है, चांद गोल होता है, लेकिन फैक्ट यही है कि चांद और धरती का रोटेशन इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि बचपन से अभी तक हम चांद का हमने सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, यानी सिर्फ एक ही साइड हमने चांद का अभी तक देखा है अपने आंखों से, दूसरे साइड हमने कभी नहीं देखा। आप सैड मत हो, अगर आपको एक से ज्यादा चेहरे देख रहे हैं तो फिर अपने एक्स का देख लो। मूड खराब नहीं करूंगा। चलो बैक टू बैक आपके लिए अमेजिंग गाने प्ले करने वाला हूँ। कितने गाने? 4। ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।

0: फॉगी फॉगी मौसम है भैया, धुंध ही धुंध है, ओस ही ओस है। और इस वक्त गंगापुर सिटी में मैं अगर तापमान की बात, वेदर की बात, टेम्परेचर की बात ना ही करूं तो बेहतर है। तो किसकी बात करूं, बात करूंगा इस वक्त गाने की। मैं खिलाड़ी गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में, लिरिक्स लिखा है माया गोविंद ने, कॉम्पोजिशन अनु मलिक ने, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट किया तनिष्क बागची ने। और ठंड बहुत है भैया, बातें कम करूंगा, गाने सुनाऊंगा, अगले 3 बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: गंगापुर स्थिति की धरती रेडियो डीएस रेडियो डीएस रेडियो डीएस
1: जल्दी चलो लेट हो गए।

0: देखो, एक होता है सही समय, एक होता है गलत समय, और एक हो रहा है अभी का समय जो 9:15 से ऊपर है या नीचे मैं नहीं बताऊंगा, खुद से अपनी घड़ी चेक करो। इससे पहले आपने गाना सुना क्या लोगे तुम, बी प्राक की आवाज में। लिरिक्स लिखा था जानी ने और कॉम्पोजिशन भी जानी ने, लेकिन बी प्राक। जब फिल्म एनिमल का ट्रेलर आया था तो उसमें एक बहुत ही शानदार सीन था जहाँ पे रणबीर कपूर और अनिल कपूर वो एक्ट कर रहे होते, जहाँ रणबीर कपूर कहते कि मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, आप पापा हो मेरे, और फिर वो डायलॉग आता है सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं। तो जब भी मैं बी प्राक के गाने सुनता हूँ मेरे को वो सीन याद आता है कि सुनाई दे रहा है। इसी बात पे चलो तीन गाने बैक टू बैक आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अक्सर हम बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सेम नहीं होती, वैसे ही हर दिन हमारा सेम नहीं हो सकता। तो परेशानी को छोड़ के उम्मीद पे जिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। सुप्रभात
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। सुप्रभात 89.6 पे रेडियो डीएस।

रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान खाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। सुप्रभात 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: मैं सुबह के ठंड से कम और बॉस की बातों से ज्यादा परेशान रहता हूँ। चार दिन पुरानी बात है यार, मैं किसी पर्सनल रीजन से परेशान था तो बॉस कहता है आगे और केबिन में घुस गया बिना नॉक के कि यार मुझे बताओ ना, मुझसे बातें करो, मैं हल बताऊंगा, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज द की, जब तक बातें बताओगे नहीं सॉल्व कैसी होगी। अब आज सुबह की बात है, बॉस खुद ऑफिस लेट आया। मैंने पूछा आप आए क्यों नहीं, कहते मैं घर पर लॉक हो गया। तो मैंने कहा यार मुझे बताते, तो बॉस कहते क्या हो जाता उससे। मैंने कहा मुझसे कम्युनिकेट करते तो सलूशन मिल जाता। बॉस कहते यार तुम चाबी कैसे ढूंढते। अरे बॉस कम्युनिकेशन इज द की, पर आप कहीं मत जाओ। बैक टू बैक आपके लिए मैं 5 गाने प्ले करने वाला हूँ ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

हाँ हाँ हाँ, थोड़े थोड़े लेफ्ट आगे पीछे, अरे अरे अरे अरे, अरे ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इस वक्त अगर कार चलाते हुए आपने आगे वाले या बाजू वाले, दाएं वाले, पीछे वाले, किसी भी कार वाले इंसान को आपने गंदे गंदे हाथों से इशारे अगर किए हो, तो शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और जिम्बाब्वे में नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे में रूल्स है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी आसपास वाले गाड़ी के ड्राइवर या सड़क पे भी खड़े इंसान को गंदे इशारे करोगे हाथों से, तो आपको जेल हो सकता है। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और इस वक्त ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएस 89.6, क्योंकि कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए।

0: सोनापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
1: ट्यून इन कर रखा है अपने 89.6 रेडियो डीएस और कहीं जू में नहीं हो आप। लेकिन लेकिन लेकिन आज का शो यही तक था, लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट मेरे हाथ लगा है। क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं, और एक और खास बात यह है कि अगर उनके मन में कोई ग्रज है यानी हमारे खिलाफ शिकायत है कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी याद रखते हैं। यानी कल ऑफिस जाओगे और बॉस को पुराने ग्रजेस याद रहे तो वो आपका बॉस नहीं, वो है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। सफरनामे में आज हम बात करने जा रहे हैं नौशाद अली साहब की। नौशाद अली साहब को आज कौन नहीं जानता, वो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार रह चुके हैं। उन्हें फिल्म उद्योग में शास्त्रीय संगीत के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। वो सबसे महान और अग्रणी संगीत निर्देशकों में से एक थे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। नौशाद जी का फिल्मी करियर फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी है। बचपन में हारमोनियम रिपेयर करने का काम करने वाले नौशाद अली जी को संगीत का काफी शौक हो गया था। उनके पिता इसके बेहद खिलाफ थे और संगीत को इस्लाम से अलग माना करते थे। उन्होंने नौशाद अली जी से साफ कह दिया था कि तुम्हें घर या फिर संगीत में से किसी एक को चुनना होगा। अंत में नौशाद अली जी ने संगीत को ही चुना और घर छोड़कर मुंबई चले गए। उनका मुंबई जाना संघर्ष की शुरुआत थी और उन्हें कई रातें सड़कों पर भी गुजारनी पड़ी। उनका करियर 1940 में ही फिल्म प्रेम नगर से शुरू हुआ था, लेकिन उनको पहचान 1942 में आई फिल्म शारदा से मिली थी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। नौशाद अली जी की गिनती कीमती बेहतरीन संगीतकारों में होती है, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी तो किसी को पता नहीं था कि वो संगीतकार है और म्यूजिक कंपोज करते हैं। मजेदार बात तो ये है कि उनकी शादी में उन्हीं के कंपोज किए गाने बजाए जा रहे थे। उस समय नौशाद जी के परिवार वालों को बताया गया था कि वो पेशे से टेलर हैं, इसीलिए खुद नौशाद जी भी नहीं कह पाए कि ये गाना उन्हीं का है। दरअसल उस वक्त संगीत को अच्छा नहीं माना जाता था। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। नौशाद अली जी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए 1981 और 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीतकार नौशाद अली जी ने मुगले आजम, बैजू बावरा, शाहजहां, अंदाज, मदर इंडिया और गंगा जमुना जैसी फिल्मों में संगीत दिए हैं। फिल्म मदर इंडिया में नौशाद अली जी ने म्यूजिक दिया था और ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई पहली भारतीय फिल्म थी। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए 89.6 DSFM में तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: जी हाँ जी हाँ जी, ट्यून इन कर रखा है आपने रेडियो डीएस 89.6। और इस वक्त अगर आप गंगापुर सिटी में हो और मुझे सुन रहे हो गाड़ी चलाते वक्त, और अगर गाड़ी स्लोली चला रहे हो तो शुक्र मनाओ कि आप गंगापुर सिटी राजस्थान इंडिया में हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप कनाडा में होते तो आपका चलान कट सकता था। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा, कनाडा का ये रूल है कि वहां अगर आप बहुत धीमे गाड़ी चलाते हो, स्लो गाड़ी चलाते हो, तो आपका टिकट यानी कि चलान कट सकता है। लेकिन फिलहाल गानों का चलान नहीं कटने वाले, क्योंकि अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए सिर्फ रेडियो डीएस 89.6 पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: कई बार मैं सोचता हूँ कि काश मैं घोंगा होता तो फिर ट्यून इन कर रखा 99.6 रेडियो डीएस। और मैंने घोंगा नहीं घोंगा का, घोंगा इज अ हिंदी वर्ड फॉर स्नेल्स। और स्नेल क्यों बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इनके पास एक ताकत है जो हम सब चाहेंगे कि काश ये ताकत हमारे पास भी होती। अब आप बोलोगे अरे भाई साहब स्नेल इतना छोटा सा स्नेल, इसके पास कौन सी ताकत? भैया सोने की ताकत। ये 3 साल तक बिना उठे, बिना आंखें खोले, बिना पलके झपकाए भैया सो सकते हैं। काश ये ताकत मेरे पास भी होता, आपके पास भी होता। पर फिलहाल मेरे पास एक ताकत है, आपके लिए अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ मैं रेडियो डीएस 89.6 पे।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।